हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

हाय, दिस इज पंकज उदास। मेरी ये गजल का शेर है कि आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुलदस्ता विथ वन एंड ओनली ईबी महमूद।

जो कदम कदम पे रूठते रहते हैं उनके साथ गुजारे नहीं होते हैं. Those that leave us on every step of the way, you cannot live with them. Let's listen to a tribute to Mehdi Hasan Sahab.